हर हिक जे तन ऐं मन में गुरबल विसाल तुंहिंजो विसाल

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिस्टम है वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें।
1: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, पुलिस सलाखों के अंदर होंगे।
2: केपीके में वो वजीर तब्दील या एमरजेंसी लगंदी, वफाकी हुकूमत की मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल, कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारर है केपीके में एमरजेंसी लगन घुर्जे लगंदी भी, आइन में घुर्बल जरूरतू पूरी हूंदू, सब कुछ थन्दो, एमरजेंसी बाबत आइन वाजे है। वफाकी वजीर अमीर मकाम है केपीके में गवर्नर राज केपीके में कें भी वक्त कुछ भी थी हले या न, पर सुहेल आफरीदी।

0: நாகலாந்து. गवर्नर राज धमकिन खान कुर्सी खातिर पंहिंजे नज़रिए तां आफरीदी सेनेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी. मूंखे को बि फिक्र न आहे. रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील कई आहे अॻवान सलमान. लॉन्ग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो आहे पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो. पीटीआई खे अफ़ग़ानिस्तान कम थियण तौर बि ना. अता तारड़ चयो आहे त सूबे अंदर केपी खे हुकूमत छो आहे. सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि.
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6. सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो.

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: कहे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
5: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raasan.
6: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
7: प्रतिभा मार्ग वाला दहशतगर्द का में हथियारत सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद बलोचिस्तान है केपीए में आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तई कार्यू जारी रहा दियो।
8: टी मिंटन से मां पुतो नरोबाग बाग से पुतो तो जेके हथियार बंद हुआ उन्होंने रोड से खजी जो जो गोला बाग 6-7 मानू उन टाइम से उतरे मौजूद हुआ। मां उनके गाड़ी हिट हथियार बंद के गाड़ी हिट करने की कोशिश कई गाड़ी मुझी हेठ सारन के फसल में लही हुई बंद थी वही बाद में उन दरियो खोले मुख्य बाहर कडियो मुझी तलाशी वरती। कारण यो है तो भोतारन के खिलाफ लिखे तो भोतारन के खिलाफ छो लिखे तो लागी तो ही लिखंदो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: मेरा
1: फैन। White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बनिखरा।

0: ये हैदराबाद मटिया सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर Kids

0: केपीए बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज सत दहशत गर्द मारजी विया लाइक दौरान फितनल खारिज बलोचिस्तान में चागे जे इलाके नोचका में ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारजी विया मारजी वाले दहशतगर्दन वटा वडे अंग में हथियार हथ सिज मूजिब बल कारवाइयूं जारी रहंदियूं
1: चौक हुन चौक ते जेके हथियार बंद हुआ उन्होंने रोड ते खजी जो जेको आ हड़े विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा मां उन्हीं गोलाई टन दिया पे उन्हीं नरेबाग चौक का तकरीबन छह खां सत मानू उन टाइम ते उते मौजूद हुआ मां उनके गाड़ी एक हथियारबंद के गाड़ी हिट करने की कोशिश कई जे गाड़ी मुझी हेठे सारन जे फसल में लही बंद थी वही बाद में उन दरियो खोले मुख्य बाहर कडियो मुझी तलाशी वरती कारण यो है बेतारन के खिलाफ लिखे तो बेतारन के खिलाफ छो लिखे तो ये लिखंदे सलामी न भरी पे हुए रिमाइंड उनके फोन ते ये गालू करे रहे
0: केटीएन न्यूज खानपुर मार्जे रिपोर्टर अजीम सियाल शिकारपुर में हथ एसएसपी बाजियाबी पुलिस की मेहनत करार दई छी धाड़ेल अजीम सियाल के कोट शाहू थाने के हद शेरगढ़ पिकट वट छे फरार थी वया अजीम सियाल की बाजियाबी का नापरकोट पुलिस चौकी ते पहुंचण तई एसएसपी शिकारपुर अणजाण रो अजीम सियाल कच्चे में मुख्तलिफ रस्तन का थो नापरकोट चौकी ते पहुतो अजीम सियाल त हक सच लिखण त भोतरन के सगवा करायो मास्टर माइंड लगातार धाड़ेलन से राबते में हो वक्त अचणते उन नाला जाहिर कंदुस धाड़ेलन धमकी डिनी आन भोतारन संदन सहूलतकार नाला खया तो खेस ए कुटुंब के कतल कर छींदी
2: मरी में स्कूल वैन खाई में किरी पई दह बार जख्मी टिन की हालत गणती जोगी पुलिस चवण है तो ब्रेक फेल थे सबब स्कूल वैन में खाई में किरी पई है जख्मी के बार

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद मटियारी एफ एम 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की GFM 88 नेटवर्क सेंस।
1: इट इज ब्रॉट टू इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: लाड़काणे एकन कोर्ट में फायरिंग जे वाकियन में ॿ ॼणा क सिविल लाइन थाने जी हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेदी मारिजी वियो। कंद कोर्ट में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मोहम्मद खान मारिजी वियो। ॿिन्ही कतलनि जा कारण मालूम न थिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

अभी आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी इसके लिए चित्राओ के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताने के लिए सामने प्रोग्राम हो सकते हैं जनाब और किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात बताने वाली वो ये कि भैया आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, यानी कि आज आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो अगर सवाल की बात करें तो मेरा आज आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या फिर गरीब होते। क्योंकि कुछ लोगों की आदत नींद करते हैं, फिर आदत होती है वो थोड़ी सी नींद करते, बस 2-3 घंटे नींद करके उनको लगता है कि बस हो गया हमारा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज कर लीजिए पैसों से मिलती तो काम का ऐसा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उठाइए LRK इंग्लिश पास दीजिए, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए। अगर आप मुझे फैल हैं तो जी लाड़ी 8.8 हमारा पे बिल्कुल जनाब सर्च करेंगे जी लाड़काना FM 88.8 तो आपको आराम से हमारा पेड़ प्रोग्राम की मिल जाएगी। जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए भाईजान चर्चे हो रहे हैं और आपके थोड़े बहुत से खर्चे तो डी स्किन प्योरी कराना चाहते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको नंबर के ऊपर आपके करीबी इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी आगे नहीं क्या होता है कि हमें पता चल साथ, अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चाहते हैं स्टोर्स पर नंबर्स के ऊपर रब्ता करना चाहिए, नंबर्स के ऊपर रब्ता किया करें, स्टोर्स पर

0: डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो सके, तो जल्दी से नंबर को डायल कीजिए जो है जनाब 03125025 312 970 4309 3 है 73 84 309 ही नंबर आए जे पास स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस
1: वॉश
0: तुम पाल करायो तमाम भी खूबसूरत भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था। ओके जी, सो साथ मुझे बता तुमसे मिलती तो आप अमीर होते या फिर गरीब होते, सवाल का जवाब यहाँ पर अब ओके जी। मोहम्मद खान कुंभर हाली पोचो स्टाफ मीरपुर खास का तमाशा के ज्वाइन करवाए तो मोहब्बतें वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हाय आपी अल्लाह पा गाने जी फांदी तमाचो गानो हसी मेरे साथ मौजूद है। ओके जी, शाजिया को भी वेलकम कर देते हैं और इसके साथ साथ जैन अली हमारे साथ हैं। जैन अली लिखते हैं कि नजर मुझसे चुही थी, ना जाने क्या छुपाए जा रही थी, वो मेरा दो और कुछ नहीं है, मुझे पागल बनाए जा रही थी, तेरे पहलू में कोई अजनबी था, मुझे ये बात खाए जा रही थी, मेरे सर पर वो रखकर हाथ अपना कसम झूठी उठाए जा रही थी। अरे भाई ये तो बड़ा मसला हो गया, आप ऐसा कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और वहीं भाई हमारे साथ कहते हैं रूह के बलजियां वकोड़े थी जी सा जी छात जोड़ियो थई चूड़ियों चंड जियां टुटियो आहिन बहां के एतरो त मोड़ियो थई प्यार खां कोन थो मुड़ी अज भी केतरो ए अयाज लोड़ियो थई। शेख अयाज जी शायरी तमा शेर कई है, कहते अदा छा लाए खुशायो सफा चाको सलेट कलम मस्ती डबे प्रोग्राम सफा लशपश वाह वाह आहे तमा जियां। थैंक यू सो मच प्यारा भा तमा जो मोहब्बतू आहिन प्रोग्राम में शामिल आहियो आई पोस्ट के लाइक शेयर कंदा हलो टॉपिक के फॉलो कयो। निजाम भट्टी कादरी भाईओ में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मटियारी खां तमा सके ज्वाइन कयो आहे तमा जो भी मोहब्बतू आहिन सागर में सुन रहे हैं सागर खत्री भाई वेलकम आप हमें सुन रहे हैं पंजाब इंडिया से। ओके जी इंडिया से आपने हमें ज्वाइन कर दिया है सागर भाई आपको वेलकम कर देते हैं बहुत शुक्रिया के साथ आप हमारे साथ सुन रहे हैं। गोठ जाम खान लगारी से कहते हैं सिस्टर अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप शो तमाम नाई से सॉन्ग हाँ बिल्कुल तांगे गानों बधरायूं था डेडिकेट कयो आहे अजहर लगारी आकिब लगारी आसम लगारी आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर इमाम बख्श खोखर खालिक लाशारी सिस्टर ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है सिस्टर। हाँ जी ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। अच्छा सागर भाई कहते हैं अरे जी सिंह का गाना लगा दे मेरे नाम कीजिएगा लगाते हैं हम तो आप परवा के आपका खबर को नहीं मुख्य हिदायतुल्लाह भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे कॉपी सॉन्ग है अच्छा ठीक है लिंक शेयर की और फहीम भाई कर देते हो अपने कहाँ भेजा है जो मैंने इग्नोर की कल ही हमारी नींद खरीद सकून इसीलिए हम अच्छा एक्सपेंसिव होती है। हालांकि हमारे साथ मौजूद ही बात है हाउ आर यू बट आई एम नॉट वेल अच्छा आपको तबियत आपकी अभी तक ठीक नहीं हुई क्या और आप जरा पोस्ट पे आप लोगों के पास आते हैं आपका होगा तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ डी स्किन ब्यूटी शो इस स्किन ब्यूटी बता दें दुनिया को कि आप भी खूबसूरती के लिए खूबसूरत रह सकते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और हासिल करते रहिए।
2: हक सच जो आवाज संगीत जो आवाज सिंध जो
3: दिस टाइम
4: है में डैमेज क्रीम कुदरत तैयार कयल साफ नरम आई रोश है में डैमेज क्रीम
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान फाइनेंसिंग।
7: छा अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पिंखे बनाए फ्रेश सॉफ्ट इनो डी अवानो जे इस्तेमाल सूरती ए हर वाइट एश ब्यूटी क्रीम ब्यूटी सोप सार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बासान।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
8: GFM 91.6

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद बाइट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन दिहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास नटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद

और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है ये इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है। स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हमारे साथ जरूर शेयर किया, आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को और यहाँ पर जितने उनको भी बता दें इस्तेमाल ऐसा है कि भाई आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर आपकी भी टो पर इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ आप चाहे मर्द हस्तादीन है, हर कोई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज जो है ना वो इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे पहली बात जनाब ये मेडिकेटेड फार्मूला है और जो मेडिकेटेड फार्मूला होता है ना उससे ये चीज तो वाजे हो जाती है कि भाई उसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है और हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो मेडिकेटेड जो फार्मूला जो भाई

बिल्कुल फीडबैक्स मुख्य मिलना वन था फीडबैक्स तो बिल्कुल तमाम जा असा शामली प्रोग्राम रखना सी पर हेते तमाम चला मजी मजी जा गाना रखा है सो वे केर बुधंदो असा बुधना सी बाबा अजो ते खूबसूरत गानो बुधो तमाम जी नाले आहे जेके जेके असा के बुधो पया प्रोग्राम आहे वाइटिश एंड डीज कैन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी

हांजी मिठड़ो जो वणी वो है छो तो मिठड़ो अजकल डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करें पो अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था तो लाजमी कजो ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है हजार खंड तो वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं भाईजान ठीक ठाक मजे में हाँ जी हिदायतुल्लाह मैंने देख लिया था आप भी देखिएगा हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपके शो में आके साथ हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है मैं तो अमीर होता अल्लाह यानी कि तमाम घटन इंटर कंदा आए हो मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम आई स्वीट बुआ जी वेलकम टू यू कहते अर्ज किया है ठहर ठहर कर खुदारा कलाम कीजिए ना उदास शब का भी कुछ एहतराम कीजिए आपकी आंखों सुना है आपकी आंखें जो है वो बादशाही आंखें हैं ये हमको गुलाम कीजिए ना नजीर को सुबह में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से भाईजान आप लिखते हैं कि दो मरतबा ये बात याद रखें किसी ने से पहले उससे हरगिज़ ना डरे और अपनी सोच और खौफ को गैब के इलम में हैं हमेशा खैर की उम्मीद रखें हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करें और जान लें कि जब बंदे पर कोई आजमाइश नाजिल होती है तो उसके साथ अल्लाह की मेहरबानी और लुत्फ भी नाजिल हो रहे होते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे बिल्कुल जी पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें कंजूसियां इस मामले में नहीं बनती चाचा खालिद कहते हैं नींद तो हमसे रूठी हुई है बेटा सदियों से हम

0: तो बाल थे ना मुझे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, डीज स्किन यकीनन हो जाएंगे खूबसूरती के मामले में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं तो डीज स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और डीज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो जो नंबर आपको बताया ना उसके पर रابطہ लाजमी कीजिएगा। नंबर डायल करने के साथ ये हो जाता है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डीज स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डीज स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाता है। तो डीज स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस्तेमाल कीजिए। और जानिए कि मैं इतना क्यों बताती हूँ डीज स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अच्छा यहाँ पर दर्दे दिल हमारे साथ माजूद ही, वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, कैसी हो? माशाल्लाह बहुत प्यारा शो, थैंक यू वेरी मच स्वीटी। अच्छा भूती अल्लाह। अच्छा फलक अली हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये सॉन्ग प्ले कीजिएगा। आई ट्राई। बैठी आप अपनी सीट पर, आपका गाना लगा दिया जाएगा। मोहम्मद जमान कहते हैं ना गरीब ना अमीर, ओनली निंड लवर। हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि इंसान की सच्ची पहचान उसके मुश्किल वक्त में दिखाई जाने वाले रवैये और सब्र से होती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और शाजिया कहती हानी एक बात सुने, क्रीम बिल्कुल यूज करती हूँ, नाइस क्रीम आहे, क्रीम जो नालो छाए यू तो बुधायो नी। मीर मोहम्मद ब्रोही भाई में सुन रहे, वालेकुम असलम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो नाइस ए गोट धी मदेजी से भी ब्रोही हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, वेलकम हो गया। फलक लिखने से बहुत खुशी मिलती है, बड़ा हूँ और शामले प्रोग्राम भी नहीं हो पाता, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। और नूर खान हमें सुन रहे हैं, कहते टॉपिक में बड़ा अमीर होता अल्लाह। पल बलोची लिखते हैं कि कहाँ जाकर दुआएं करूँ कि मिल जाए तू, ऐसी कौन सी मन्नतें करूँ कि मिल जाए तू, तेरे बगैर अली सा लगता है, बता ऐसा क्या करूँ कि मिल जाए तू। सिंधी सॉन्ग सुनाओ, डिसा डिसा माँ वरी वरी तोखे, माँ डिसा थी गानो मुखे मिले। मैडम तव्हां जो शो लाइक एंड शेयर करे छॾियो आहे, बहुत शुक्रिया। टॉपिक में गरीब और अमीर दोनों होता वो कैसे भला बताए तो। फार भाई हमारे साथ खुश आमदीद, मेलसी सी हमारे प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है हमेशा की तरह, सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम भाई। और फहीम भाई कहते हैं डॉक्टर माई जो नालो अञा ताई खबर ना ही पई, मैडम का पुछा उन भी चयो मुखे केड़ी खबर, तांके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से मतलब हुए ठीक है, नालन जो तुम्हें छा कंदा ब्यूटी क्रीम के अंदर कहने डी स्किन ब्यूटी क्रीम तांके केड़ो केड़ो फायदो दींदी ठीक है या तुम्हारी खबर हो जी। ओके जी, मलिक नजर हुसैन भाई हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर हुसैन, मलिक भाई आपको वेलकम कहते हैं। और शरारती बच्चा कहते हैं आवाज तो बहुत प्यारी है पर आपकी जबान कौन सी है, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है भाई, सिंधी सिंधी कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताइएगा जरा। शरारती बच्चा और चाचा कहते हैं कि आप उर्दू मीडियम से पढ़ी हैं या सिंधी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए क्यों राधा उर्दू। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, मटियारी सी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। हमारे एरिया में डी फेस वॉश कब, जो फेस वॉश है ना वो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए ठीक है।
1: काम हो मीठा महबूब तुझे हाथ में गुलाब हो, हाथ में गुलाब,
0: हाँ जी हाथ में गुलाब हो, पर गुलाब की जगह थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुई तो मजो अच्छी बनी। अच्छा निधि मुझे लग रहा तो चाय पी नहीं जा चला जाता है, चाय पीछे तो दवाइयाँ खानी पड़ती है, दर्द जो है वो थोड़ा सा ठीक होता है। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और वासु भाई भी आ चुके हैं, हेलो वासु भाई। अच्छा शरारती बच्चा कहते हाय माशाल्लाह बच्चों वाली हंसी, कहीं आप एआई तो नहीं, लग भी मुझे ऐसा ही रहा है कि मैं एआई हूँ। वाकई भी आजकल जो है ना एआई लोगों की जॉब्स खा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई मैं एआई बन जाती हूँ। कम से कम मेरी जॉब तो सेफ रहेगी, समझ रहे।

दर्द दिल कहती है कि मीर होती चंदा अच्छा चाचा लगते हैं कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम क्या सूरत करता है। अहमद भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम। राजा लगते हैं कि अमां तो ही सवाल ही न पूछा हाँ गरीब हुजा हाँ तो पैसा उधार बैठी जवाब दिया हाँ डूड सही है ना जवाब जी जी डूडी आप बताए कहाँ गायब रहते हैं आजकल इतने मसरूफ है हाय अल्लाह। अब्दुल जी कैसे हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम। पोस्ट को लाइक आयो नहीं तो

0: आकर यूं वापस आती हूँ। GFM 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं YTA।
1: It's 2 PM. This time check.
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
1: It's 2 PM. This time check is brought
0: Beauty Glow International Pakistan।
4: अब आप सुन GFM News।
5: की जवाब जो इंतजार है गुजरियल थियल मुलानी मौकफ अमरीक वाइमी प्रोग्राम बाबत भी गुमराह कंदड़ प्रोपेगंडा कई पई वे ईरान के मौकफ में का भी लचक न आई आबना हरम्स बाबत शर्त बरकरार आन।
6: केपीके में दहशतगर्दी के कंट्रोल करण पीटीआई के वस में ना है डायलॉग हणण से कुछ भी नी कम करण पवंद केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है पीटीआई वारा लॉन्ग मार्च जो ऐलान तो कन था पर ही सवाबी भी पार कर न सकंदा आईन ए कानून के न मंदड़न से गालू थन्द
7: नरोबाग चौक उन चौक हथियारबंद हुआ उन रोड से खजी जो जो फड़े मौजूद हुआ गाड़ी एक हथियार बंद की कोशिश कई गाड़ी मुझी हेठे सारे के फसल में लही हुई बंद थी वही बंद खोले मुख्य बाहर कडो वरती कारण यो है तो बोतारन के खिलाफ लिखे तो बोतारन के खिलाफ छो लिखे तो लागी तो ही लिखन्द अचे तो बोतारन की सलामी न भरीद है जो उसे मास्टर माइंड उन फोन से ये गाल कर रो।
5: KTN News खानपुर मर जो रिपोर्टर।

0: The cream of creams. Golden Pearl 24K Gold Clamp Cream Bleach. The instant glow.
1: ख़िदा हुसैन भुले थी मार जी वयो जड़े त कंद कोट में अण जातल हथियार बदन जी फायरिंग में मोहम्मद खान मार जी वयो बिनी कतलन जा कारण मालूम न थी सघिया। इस्लाम कोट जे गेस्ट हाउस मां किरसन जो लाश हथ इंतजामिया मूजिब मलीर वासी सैयद आफ्ताब आलम रात कमरो बुक करायो चयाई त थर कोल ते कम कंदो आहियां।
2: मरी में स्कूल वैन खाई में किरी पई 10 बार जख्मी थी पिया। टन की हालत घंटी जोगी है। पुलिस मूजिब ब्रेक फेल थियण सबब वैन खाई में किरी है। जख्मी के अस्पताल मुंतकिल है।
1: सकरण में एमआरडी तारीख दौरान शहीद थियल सोरहं जणन जी 43 वर्षी गोठ पुनल खान चांडियो में वर्सी तकरीब। शहीदन जे वारसन जी मज़ारन ते हाज़िरी। गुलाम कादिर चांडे चयो आहे जमहूरियत जे बहाली लाइ जान जी कुर्बानी ॾेई।
2: सिंध में नव
3: जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
5: खुशखबरी आगे परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकर तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे।

0: एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज़, गीत आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: क्या जा रहा है? बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, और क्यों ना बताया जाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इतने दुलारे प्रोडक्ट्स जिनके लाड उठाने को दिल करता है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो भाई जान जल्दी कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है ना, अगर आप करेंगे तो आपकी खूबसूरती में जो है ना वो चार चांद लगने वाले हैं। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी कीजिए, जो जो आप सुन रहे हैं ना आप सारे लोग कीजिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज क्यों करेंगे ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो क्यों है। सो बिल्कुल

जी, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, अभी भी आप लोगों को बताएंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में इन है, अगर आप जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बता दें कि आपको जो नंबर्स प्रोग्राम में बता रही हूँ ना, उनके ऊपर आपने रब्ता करना है। नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो नंबर्स के ऊपर रब्ता किया करें और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहें, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है, कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट तो आपको सिदरा बताएगी नहीं ना। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये जनाब 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो ये बजाहिर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये आपको रिजल्ट जो देगी वो फेशियल वाले रिजल्ट देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप इस्तेमाल करें तो खूबसूरती के साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, तो बिल्कुल आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। तीन हेकोजिक स्किन ब्यूटी क्रीम बनी है और बहुत शानदार से है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ऊपर किया जा सके, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, हर स्किन के ऊपर आप आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपसे रिजल्ट मिल सकते। क्योंकि अगर घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी अपनी शादी हो रही है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बिना तो भाई ये चीजें अधूरी हैं। आप जरा अपनी जिंदगी को मुकम्मल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है ना, वो आपको बार बार लगातार आप जितनी भी सुनिए स्किन बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने के लिए अपनी रोल कीजिए जनाब, खूबसूरत सा एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खूबसूरत और खास बना देगा जनाब। आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है, आपकी जिल्द की जो है ना वो ऐसे आपको महसूस होता है कि भाई हमारी जो जिल्द है वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, ताजगी आ चुकी है आपके चेहरे पर, फ्रेशनेस। और ये खूबसूरती आपको मिल सकती है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो ऐसे अकेले आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं परचेज करनी, साथ में आप डी स्किन का जो फेस वॉश तो डी स्किन, और वो इसलिए एड किया गया है ताकि जो आपकी स्किन है ना वो हमेशा मॉइस्चराइज रहे, डीपली क्लीन रहे और आपके चेहरे की स्किन जो है वो हम रहे। तो डी स्किन का इसे आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह को लगाइए, दोपहर को लगाइए, रात को लगाइए और सो जाइए। बिल्कुल जी, आप ये तरीके का जब फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए मतलब जरूरी हैं, और इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किन को भी जरूरत होती है भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अगर आपको नहीं पता कि कौन से हैं तो आपको बताती हूँ मैं, रो में सुन सके मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो डायल करेंगे जनाब 0332738 4309। बुढ़ी 300 73 84 3 बो नंबर है 03-1505-907। बुढ़ी 312-50-5970। ये नंबर्स आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते जाइए। बिल्कुल जी, क्या ही शानदार सा कॉम्बिनेशन है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए, अगर नींद पैसों से मिलती, हाँ जी सुनी होते या गरीब होते कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा नींद करते हैं या फिर आप तोली तोली सी नींद करते हैं, तोली तोली सी नींद। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि भाई हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अगर आपके एरिया में भी नहीं मिल रही है तो आप भी डायल कर सकते हैं ये नंबर जो अभी आपको बताए हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से गाना, फरमाइश तो ये पता नहीं किसने फरमाइश कर दी थी, तो चलिए जी गाना सुनते हैं।

0: डाकर खतरा
1: न पैसा कर खतरा
0: जियो ओके जी बिल्कुल शेयर करते रहिए। यहाँ पे जाने बात है पैनल पर आपके मैसेजेस मिला है वो मकसूद मल्हा का ही, कहते मेहरापुर से सिद्रा मुस्कान हेलो हेलो जी हेलो, कहते वो बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें लड़की बोलती है।

0: अरे नारी नारी, ओके समझ गई. कहते हैं वो सुना दे और क्या कहते हैं. जी जी, हमने शमन का गाना तो सुन लिया ना, आपने एंजॉय करा होगा. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है. मकसूद मल्हा गोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते तवाजो शोवरी नाइस आई सलाम तवाके वालेकुम असलाम तवाके प्यारा भा गोट गुलाब लगारी खां साबिर लगारी रिजवान लगारी वालेकुम असलाम शो नाइस है प्लीज प्ले फायजा अली. ओके आई ट्राई. शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनैन सेहरा आपका शो सुन रहे हैं. आपकी कंपेयरिंग अच्छी है. हमें दिया में कोशिश क्रीम कहती है असलाम मुझे हर जगह मिलेगी अपनी टांगों को जाइए करीबी वहाँ से स्किन ब्यूटी क्रीम और आपकी फैमिली को भी वेलकम कहते हैं. चाचा खालिद आपने गेम थैंक यू ओके मैं लगाती हूँ जी. और अल्ताफ को सो चाक जाने चाचू लिखते हैं कि मकसूद अच्छा दो दो चाचा आप गाने क्यों फरमाइश करते क्या करें गाना. बिस्मिल अजरा को सो इन मीस हो थैंक यू. मुझे बताएं कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक रहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल. मर्द खवातीन सारे लोग ये कर रहे हैं उनसे जरा जा रहे थे तवा की रीसेंट सुना थी दा हेलो
1: प्यार खान मथे
0: आए हाय
1: प्यार मोहब्बत पे जिंदगी
0: आपको क्या मामला. अच्छा ये हमारे साथ है महल आवाज से गुलाम शबीर अबड़ो बाजे सिद्रा पैसा होगा तो नींद भी आएगी वरना सोच के रात गुजर जाएगी. मैं सुना दो तुम हमसे बिछड़ जाओ ये हक है तुम्हारा बोलो हमारे बिन करोगे कैसे गुजारा. वाह सही वाह लगाते हैं ये गाना आपके लिए. फिर खासी अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल्ला महर भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं क्या बात है जी ये तो बढ़िया हो गया. इरम कहते हैं आप ही खैर तो है मुझे नहीं पता.

के दौर में लगता है हाँ सब कुछ है। मिदड़ी कहती है सब कुछ से तो पैसा ही है आजकल, ओ या गाल। किशोर भाई कहते हैं दुनिया में पैसो ही तो सब कुछ आए, ओ या गाल। हिदायतुल्लाह कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। दिसो, दिसो, दिसो।

कुछ तो आहे बिल्कुल जी पैसे से डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तुम वी डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम वी सोसो पैसो जरूरी है उन हमारे सारे चाचा खालिद को सलाम झंडो मरी खां अली हसन खास के लिए मंजूर अली खास के लिए गुन पहाड़ खास के लिए यार मोहम्मद खास के लिए ओके ओके मकसूद मला कहते सदरा सवाल तो बहुत अच्छा किया है पर मुझो वरी दिमाग कमी न थो करे सर के ऊपर बहुत जोर दिया है तोहफा रख दिया है अब तो मुझे चक्कर आ रहा है इतनी आपने जरा मेहनत क्यों कर दी बताएं मुझे अल्ताफ कौशल जाग जानी चाचू लिखते हैं प्लीज प्ले भाई हाजिर हाजिर लगाते हैं आपका गाना थोड़ा सबर कीजिए अच्छा टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या गरीब होते

हा भाई झंडो मरिए में चाचो असो फेमस थी वो है झंडो मरिए मानन के अलाए केड़ी चाचे सा सिक है चलो झंडो मरी में तांके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो झंडो मरिए वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम इस्तेमाल कर पाया तो मुझे लाजमी बुझाजो ठीक है।

ओके जी, हज़ार भा कहते पैसो कुछ भी ना है, पैसो कुछ भी ना है, तो तुम पांजो पैसो जो है ना वो हज़ार भा ने सभी मानों के विरहा दियो जो चंदा पैसो पैसो सब कुछ हाला जे ये चवंदा न असा पैसो कुछ भी ना है, असा नजर में पैसो कुछ भी ना है, ओए पांजो पैसो पो विरहा छन छडींदा है, पान वट पैसो रखंदा छन न लाई सारी प्रॉपर्टीज हुंदी है। ये चीज जरा समझ नहीं आती। और ये बात भी अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो भाई इतना सारा पैसा है तो उनको बांट देना लोगों में, आपने क्यों रखा है अपने पास से? और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए उन्हीं पैसों से खरीद करके, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको लगता होगा बहुत महंगी है, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मुनासिब से पैसों में आपको मिल रही है, तो आप जाएंगे और परचेज करके आ जाएंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको देगी जनाब फेशियल वाला निखार, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द हसादी खवातीन भी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी हर स्किन के हिसाब से तैयार की गई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और खूबसूरत होती जाए।

अच्छा डोडी कहते हैं कि पैसा एतरा घट आए जो एटीएम भी डिसी चवे तो भाऊ दुआ कर अल्लाह अच्छा किशोर भाई कहते मेरे हाथ की चाय नहीं पीना वरना सरदर्द गायब हो जाएगा अल्लाह इतनी पावरफुल चाय था ठाईंदा आयो छा मौजिम चांडियो हमें सुन रहे हैं मौजिम चांडियो भाई आपको वेलकम कहते हैं जर्मंड माली हमारे साथ कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई और राजा कहते हैं कि डूडी सॉन्ग चलाओ हाजिर डूडी गानो तुम बुधो निदड़ी कहती है कि हाँ भाई तां तो वैसे हमेशा ही दुखियल आयो तो दुखियल मानू खा अरे केड़ा असा केड़ी असा दवा पूछो सही है और दाऊद अली पी हमारे साथ है दाऊद पिताफी भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक हूं आप बताएं कैसे और मीर मोहम्मद बिरोही भाई तवां जो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम के पसंद कयो पई चौथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो नाइस आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन इयो भी बुधाए छो अच्छा शरारती बच्चा लिखते हैं कि सुनने में मजा आ रहा है सिंधी जबान को लेकिन समझ आना बहुत मुश्किल है यानी सिंधी जबान को समझना बहुत मुश्किल काम है तो बस आप सुनकर जो है ना वो मजे लीजिए और मायाली हमें सुन रही थी इट्स सो गुड शो थैंक यू मायाली और अबू हनीफ कहते हैं मैं इंतजार इतना करूंगा खुदा भी कहेगा ले ले ये हक है तेरा आई ली तो अरे नहीं भाई डी स्किन का लोशन अभी तक नहीं आया व्हाइट एज का लोशन मिलता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है अभी तक तो अगर सर्दियां आ रही हैं आपको लोशन की नीड है तो आप व्हाइट एज का लोशन जो है ना वो परचेज कर सकते हैं

0: भाई, चाचे का शादी हम क्यों कराएंगे? चाचे का शादी तो ऑलरेडी हो चुका है ना।
1: हर कोई मिल दे, कोई रोंदे, कोई।
0: अच्छा जैन अली कहते हैं हमारे यहाँ तवां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथे मिले। चलो असां तवां जे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करायूं था, ठीक आ जैन अली।

हिदायत उल्लाह मुलाई के बारे में इन्फॉर्मेशन हम नहीं रखते. आप ही रखिए और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी अपने पास रखिए. और यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टेट यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: इट्स 2:30 PM. चेक एक
1: खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके आए.
2: सोना बाकी मिले 50 साल तक के मुद्दे बेस्ड फाइनेंस का रहने दो. 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: लाड़काने वास्ते लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी के बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारश वार चरो पुरानो फट चिथरी लैशमिनासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थन वारन जा मसला एलर्जी औरतन के चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजे थो. डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ी के बीमारियों जो माहिर. एड्रेस अली हॉस्पिटल वगड़ रोड लाड़काणो. टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे तई आचर से क्लिनिक बंद रही. मालूमत लाए मोबाइल नंबर 03124344689.
5: डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो MBBS FCPS तजुर्बेकार माहिर जनरल फिजिशियन इते मेडिसिन से लागापियल सभी बीमारियों जो इलाज किया वे तो जैमें मलेरिया जो बुखार टाइफाइड खंघ नजलो जुकाम छाती जा इन्फेक्शन शुगर ब्लड प्रेशर गैस अल्सर कब्ज मैदे हाजमे जा मसला थायराइड जा मसला मोटापे जो इलाज वाइटमिन्स की कमी थकावट कमजोरी जिगर पेट जो बीमारियों जोड़न जो सूर दिल के शुरुआती बीमारियों जो बेहतरीन इलाज किया वे तो डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो माहिर जनरल फिजिशियन. एड्रेस तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स सामू आर्ट्स काउंसिल सचल कॉलोनी लाड़काणो. टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे का रात जो 9 बजे ताई आचर ते मंझन जो 2 बजे का रात जो 9 बजे ताई. याद रखंदा जुमे जे दी मुफ्त चकास कई विंदी आहे. राबते जे लाए मोबाइल नंबर 03051231559.
6: खुशखबरी, लाड़काने जो मशहूर अगूणो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी शहीद मोहतरमा मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ रिटायर्ड फलोपोचो फिफड़न के बीमारियों जो माहिर MBBS DTCD FCPS इते टीबी नमूनिया पुरानी खंग बलगम में रत अचण रेजस फिफड़न में जारो पानी जो भरजन दम सहको साह की तकलीफ छाती के कैंसर जो इलाज किया वे तो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फलोपोचो फिफड़न के बीमारियों जो माहिर. एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज जेल रोड लाड़काणो. क्लिनिक टाइम रोजाना सुबह जो 10 बजे का मंझन जो 1 बजे ताई शाम जो 4 बजे का रात जो 9 बजे ताई आचर जे दी सुबह जो 10 बजे का शाम जो 4 बजे ताई जुमे जे दी क्लिनिक बंद रहंदी. राबते जे लाए 07440555377 मोबाइल नंबर 03012. याद रखंदा अपॉइंटमेंट टेलीफोन मोबाइल नंबर के जरिए भी डिनी वेंदी आहे.
7: हर चेहरो पंहिंजी अलग सुञाणप रखे थो ऐं हर सुञाणप खे घुर्जे खास ख्याल. फोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सां गॾु अव्हां जी रोज़ानी स्किन केयर रूटीन जो हिस्सो. नरमी जो एहसास, ताज़गी जो एतमाद ऐं केयर जेका हर ॾींहुं अव्हां सां गॾु हुजे. एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम खूबसूरतीअ जो एतमाद हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सां गॾु एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप ज़रूर इस्तेमाल कंदा. शहर जे हर मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे. हेल्पलाइन नंबर 03141705555.

0: 1-800-875-8.
1: छा अवां के या अवां जे कहें बे मिट माइट के छिन गले जो गुदूद पिते जी पथरी थायराइड मोका पेट ए छाती जो बीमारियों या कहें बे ऑपरेशन जो मसलो आहे त हाणे अवां के फिक्र करण न घुर्जे। मशहूर ए तजुर्बेकार कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर पिरह मेमण MBBS FCPS हाणे अवां जे पंहिंजे शहर में मरीजन जो मुआइनो ए इलाज करे रही आहे। एड्रेस तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स सामू आर्ट्स काउंसिल सचल कालो। टाइम रोजाना 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं। आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 मार्च लाइ ज़ीमण अवां जी सिहत जी
0: ज़िम्मो आहे।
2: इन जा मुख्य कारण मौरूसी, मोटापो, वर्जिश न करण, गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वग़ैरह आहिनि। शुगर जे मर्ज़ जूं ख़ास ख़ास अलामतूं ई आहिनि। बार बार पेशाब जो अचणु, अचानक वज़न घटि थी वञणु, बुख घणी लॻणु, मथे ते दॿाउ हुजणु, हथनि ऐं पेरनि जो सड़णु, सॼे जिस्म में बाहि वांगुरु महसूसु थियणु, कमज़ोरी महसूसु थियणु, पेरनि में फट थियणु, टंगुनि में गिढियूं पवणु ऐं कंध जो गोरो थियणु। वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर नदीम अख़्तर कोराई MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी।
0: वेहण जो हंधु ग़ुलाम अकबर शुगर क्लिनिक साम्हूं म्युनिसिपल स्कूल लाड़काणो।
2: टाइम रोज़ानो मंझंदि जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं। यादि रखंदा जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी।
0: मोबाइल नंबर 0334325121।
1: खुशखबरी, लम्स हॉस्पिटल जामशोरो मलेशिया ऐं चाइना मां तालीम याफ़्ता नंदन ऐं वात जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद यूसुफ अली शाह BDS MDS PhD डीन ऐं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। हिते ॾंदनि जी सफ़ाई, रूट कैनाल, मुंहं जो न खुलण, वात जो अल्सर, ॾंदनि मां रतु अचणु, ॾंदनि जो लुॾणु, फिक्स बटरी लॻाइण, ॾंदनि में माकोड़ी लॻणु, लेज़र ऐं चांदीअ वारी भराई करणु, ब्लीडर ज़रकुनेन ऐं आर्टिफिशियल यानी डेंचर ॾंद लॻाइण, वात ऐं मुंहं जो एक्सीडेंट थियल जी सर्जरी ऐं प्लेट लॻाइण जो जदीद तरीक़े सां इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद यूसुफ अली शाह ॾंदनि ऐं वात जे बीमारियुनि जो माहिर सर्जन। एड्रेस अली हॉस्पिटल, वगन रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। यादि रखंदा डॉक्टर साहब राचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं वेझो इमाम मेडिकल सेंटर जेकबाबाद में मरीज़नि जो मुआइनो कंदा आहिनि। राब्ते जे लाइ फिदा हुसैन। मोबाइल नंबर 0334-220-5154।
3: GA FM 88
0: सिंध की आवाज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

बोलो हमारे बिना करो कि कैसे गुजारा, क्योंकि हम आपको बताते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम खत्म हो गई, आपको नहीं पता कि कहाँ से मिलने वाली है, तो फिर तो जाहिर बात है गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपके घरों में शादियां होने वाली या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो भाई साहब लाजमी करना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको हर जगह मिल रही है, हर जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो प्रोग्रामिंग नंबर्स बताती ना उनके ऊपर राबता करते रहिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाए।

बिल्कुल जी, हम आ चुके हैं प्रोग्राम की लास्ट लिंक में। जो लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है जो जानना चाहते हैं भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज बड़ी फेमस है जनाब, की डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं कुल आप इस्तेमाल की अच्छा रील्स देखकर गुजारा हो जाता है, बाकी ये सही बात है, सारा नामुमकिन नहीं है, ये भी सही बात है। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो हर स्किन के ऊपर किया जा सकता है। अगर आप ये सोच कर परेशान हो रहे हैं कि हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, इसके ऊपर कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है, जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उल्टा हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखें। अभी तक आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाई ना, इसीलिए आपको नहीं पता कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपको कितने अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे से रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। ये नाइट क्रीम है लेकिन ये आपको रिजल्ट जो देगी वो एक अच्छे फेशियल के देंगे, जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग कर सकते हैं, हर स्किन के लिए है, हर इंसान के लिए है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलने चाहिए तो नंबर्स के ऊपर रابطہ जरूर किया करें। तारिक भाई हैं जिनका नंबर आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। भाई दूसरा नंबर अगर रिस्पांस ना दे तो तारिक भाई तो जरूर रिस्पांस दे देंगे, और तारिक भाई का नंबर है जनाब 03-12-50-25-907-12-50-970 ही नंबर आहे तमा डायल करे पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सगो था। अगर यो नंबर रिस्पांस न दे या वरी बंद हुजे तो तमा हिन नंबर ते राबतो कयो जेको आहे 033-273-4309-7383-74-309 नंबर तमा डायल करे सगो था। तो डायल कयो पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराईंदा रहो।

ओके जी भलो गानो जेको असा बुधंदासीन सा गडो गड तवांजा मैसेज आहे गोठ मुंदर खान पालारी से नाशीद नाशाद नेक मोहम्मद पालारी के थे अदी पैसो मजबूरी या जरूरी या इस दौर में जीने के लिए वरना मौत जरूरी या अदो लगे तो सतायल आए अदा सही था जो तवा इरम कहती है वाह वाह सिट जानी हां जी।

बॉश हमीद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वाह जी वाह, मस्त आरजे का मस्त शो, निगत नाज जो गानो, पैसा कुछ भी ना है, सदरा तुम भले मेरे पैसे ले जाओ, प्यार मोहब्बत है सब कुछ। और रही बात डी स्किन ब्यूटी क्रीम की, तो जिन्हें हम अजीज होंगे दिल वाला इंसान खुद ही लेकर मानू काना गोलू दान वो मानो मिली वेंद सिंगर ता है, अपना शो है, मस्त सॉन्ग आपने लापे। और जी हमारे साथ एक दीपू को हाँ भी बोला थे, वो कहते हैं वाह बाय।

ठाकुर जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव्हां वठी सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव्हां घुरी सघो था। पंहिंजे प्यारनि खां घुरो बाबा। जे ॾिसो साइम अमीर ॿार रखी छॾियो त को ईंदो त हुनखे चवंदसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ॾे, पर तव्हां पाण वठो बाबा। ऐं तव्हां पंहिंजे पिणी प्यारनि खे गिफ्ट बि करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सो जेके जेके तव्हांजी ज़िंदगी में पिणी प्यारा आहिनि उन्हनि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि गिफ्ट कयो। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे अहिड़ी ख़ूबसूरती मिलंदी जेका तव्हां कॾहिं बि हासिल न कई हूंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे। सो इस्तेमालु करे ॾिसो जीअं तव्हां बि सुहिणा थी सघो। अच्छा, सुल्तान महमूद हमारे साथ। सुल्तान महमूद भाई को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं।

अच्छा वसीम कहते हैं गानों तो बुधाए जो हर जाए पिड़ी हर महफिल में मुख्य तू की कमी महसूस थी रही गानों तक पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधाइंदा जी गाना वेह वा अज प्रोग्राम में पंज बजे वाले प्रोग्राम बुधंदी ठीक है अच्छा दर्द दिल कहते बिल्कुल शादी वाला माहौल हो गया था हाँ गाने ऐसे लगाए थे और किशोर भाई कहते कि अगर कोई शख्स कंखे तकलीफ पहुंचाए तो समझो हो बेरहम है उनके कदे मोहब्बत नथी होंदी बिल्कुल बिल्कुल सही था चो तुम जिनके तकलीफ पड़ी घनी वो मतलब घना निंड कंदा मानू जे घनी घनी सफा बारह बारह तेरह तेरह कलाक तो वो इलाही वा ना तो गरीब हो जना जे वे सफा

ओके जी, दादूला कहते हैं कि उसके कहने का मतलब है कि पैसा मेरी नहीं, जरा समझो। हाँ आ गई थी बात। वहीम कहते हैं कि पैसे जे करे असा घर खां परे बैठा आयो। ओ यहा गाल थी, ओ यहा गाल। और मैं तो जिंदा ही सैलरी की वजह से। हाँ भाई सवाल बीस के आधे साजिद कहते हैं स्किन लगायो पया नाइस आहे। फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से शाहिद बबर का गाना सुनायो। ओके जी साजिद भाई, मैं देखती हूँ टाइम बस क्या तो आपकी पसंद का गाना लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे। पहले था और हमारे साथ है जी शू। वालेकुम अस्सलाम। तोड़ भी दिया ये नाम ऐसे ही आपने लिखा है, जी और शू। मुश्किलों से पाया। ओके जी, और साथ साथ है शौकत अली सोलंगी भाई हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मुस्तफा सोलंगी फ्रॉम जमाल शाह भाई को वेलकम कहते हैं। जी शू भाई कहते हैं कि कैसी हैं आप ही, बहुत दिनती मच प्यारे भाई आपका। मनीष भाई दानी हमारे फैसल के लिए असा के भी याद कर हाओ भा हाओ।

जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जो दिल में बरसों रहते हैं मगर कभी लफ्जों तक नहीं आ पाते। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत, किसी से शिकायत, किसी के लिए दुआ और किसी के लिए दर्द, मगर वक्त गुजरता जाता है और वो बातें दिल के किसी खामोश कोने में दफन सी रह जाते हैं। कभी खौफ रोक लेता है और कभी अना, कभी हालात और कभी ये सोच कि शायद अब कहने का कोई फायदा नहीं रहा। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो महसूस होता है कि जिंदगी की सबसे अहम बातें वही थी जो कभी कह नहीं पाए, किसी को बता नहीं पाए। हमने खत लिखे, डायरियां भरी, लोगों से बातें की, मगर कुछ लफ्ज ऐसे थे जो सिर्फ दिल जानता था। शायद इसीलिए बात चेहरे भूल जाते हैं मगर कुछ अधूरी बातें उम्र भर याद रहती हैं। कुछ जज्बात लफ्जों से नहीं खामोशियों से पढ़े जाते हैं और हर खामोश इंसान के अंदर एक अधूरी तहरीर होती है।

अरे दिल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार में कह दे, बिल्कुल चाचा आपने सही फरमाया। और मिर्जा के लहरी हमारे साथ कहते हाय हेलो, और इसी के ये प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाते हैं, और ये गाना होने वाला है जी फोजिया सुमरू की आवाज में।

आपको रिस्पांस दे देंगे, ठीक है, आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा। अच्छा फल्लक नालेवारा भला हुंदा है। असा तारिक भाई भी भलो है। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, अगर तमा के नथी खबर पे तबा बासा काथा वठूं, या अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, डी स्किन जो फेस वॉश न तो मिले, तो तहां तारिक भाई जो नंबर मिला करे उनका हाल अहवाल वठी सगो था। आई आयशा मेमण भी असो प्रोग्राम बड़े शौक से बुधंदी है। आई आयशा मेमण की भी अस चौं था भली करे आया। अच्छा मेटा ऑफिशियल हमारे साथ है, हेलो मेटा भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं आजकल। आसिफ पमर भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे कहते हैं। अच्छा आपने शायरी भेजी है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई।

ओके जी, अबू हनीफ आपका भी बहुत शुक्रिया. और किशोर भाई कहते हैं कि अदा टॉपिक अगर केर एक घंटो 15 या 20 हज़ार जो डे तदें भी इंसान केतरो अमीर थी दो. सही आ बाबा, तां सही आ, तां सही आ. अच्छा, हुन खां अलावा जेको आहे सो इजाज़त वठंदा, ठीकु आहे. सो माल कंदा रहो, थींदा रहो, ठीकु आहे. डी स्किन सूरती में चार चंड ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अॻिते आहे त बाबा वठी अलाम नाम लिखा करी अपना. और असां मिलूं था वरी 5 बजे वारे प्रोग्राम में. सो पंहिंजो ओ एॾो सारो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त मां ऐं

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज।
1: इट्स 3 PM
2: ग्लोइंग स्किन जो राज बायोकॉन।
3: अब सुनेंगे ATN न्यूज।
4: जिंदगी भर का

0: मौकफ में काबिल लचक न आहे आबना ऐं रुम्स बाबति शर्त बरक़रार आहिनि।
1: अरिड़हीं तरमीम नाकाम थी वई आहे। नवां इंतज़ामी यूनिट अणटर आहिनि। सिंध में निज़ाम ऐं पंजाब में वन वुमेन शो हली रहियो आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम को लाभ न ॾेई सघी आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स तरफ़ वञणो पवंदो। हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे।
0: केपी ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केपीअ जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनल ख़ार जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में चागीअ जे इलाइक़े नोचका में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार हथ। सिक्योरिटी फोर्सेस मूजिबि बलोचिस्तान ऐं केपीअ मां आख़िरी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रहंदियूं।
2: ॿारहं 30 मिंटनि ते मां पहुतो आहियां नरो बाग चौक। उन चौक ते पहुतो आहियां त उते जेके हथियारबंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो जेको आहे हड़े विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरे बाग चौक खां। तक़रीबन 6 खां 7 माण्हू उन टाइम ते उते मौजूद हुआ। मां उनखे गाॾी हिकु हथियारबंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिश कई। गाॾी मुंहिंजी हेठि सारनि जे फसल में लही बंदि थी वई ऐं बाद में उन दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती। कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो। भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो? लाॻीतो ही लिखंदो अचे थो भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे। जेको उहे मास्टर माइंड उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो।
1: केके न्यूज खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल शिकारपुर मां हथ अची वियो। SSP शिकारपुर बाज़ियाबी पुलिस जी महिनत करार ॾेई छॾी। धाड़ेल अज़ीम सियाल खे कोट शाहू थाणे जी हद शेरगढ़ पिकेट वटि

0: में हो वक्त अचण ते नाला जाहिर कंदसि धाड़ेलनि धमकियूं डि॒नियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदनि सहूलियतकारनि जा नाला
1: रिपेयर्स स्मूदन्स हाइड्रेट्स पाम ऑलिव नेचुरल्स बाय नाउ
2: चक वेझो गढ़ी तेगो जे कचे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन मुबैना तौर ड्रोन जो गोलो किरण सबब टे ॼणा मारिजी विया औरतुनि ऐं ॿारनि समेत नव ॼणा ज़ख़्मी ॿ ॼणा ॻणितीअ वारी हालत में सखर इस्पताल मुंतकिल कोट शाहू थाणे जे हद ॻोठ इमामदीन मिसराणी में पुलिस पारां ॾोहारनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो मारिजी वियलनि में मुनीर हसन ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि जड॒हिं त वारसनि मूजिबि मारिजी वियल माण्हुनि कचिन वारे इलाइक़े में तिरनि जे फसल जो लाबारो करण लाइ वियल हुआ जिते घर ते मार्टर गोलो करण सबबि वाकियो पेश आयो इंसाफ़ कयो वञे
0: लाड़काणे ऐं कंदकोट में फायरिंग जे वाकियनि में ॿ ॼणा क़तल इस्लाम कोट मां हिकु ॼणे जो लाश हथायो आहे लाड़काणे जे सिविल लाइन थाणे जी हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेटी मारिजी वियो कंदकोट में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मोहम्मद ख़ान मारिजी वियो ॿिन्ही क़तलनि जा कारण मालूम न थिया आहिनि इस्लाम कोट जे गेस्ट हाउस मां कराची वासी पीरसन जो लाश मिलियो आहे इंतिज़ामिया मूजिबि मलीर वासी सैद आफ़ताब आलम राति कमरो बुक करायो हो चयाई त थरकोल ते कमु कंदो आहे
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
5: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवा

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मठियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मठियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
1: जिस धरती से
2: उसी
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है
2: बनी है आवाज,
1: FM
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: महफूज पाकिस्तान के लिए महफूज दारुल खिलाफा भी है, वो जरूरत है हमारी। और महफूज दारुल खिलाफा वो कहते हैं ना जी कि आपका जो माजी है वो आपके मई 2022 में क्या होगा, मुज़ाकरात की बुनियाद ये है कि उन्हें लीडर की हमने कि उस फोरम अदालत में हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है। जुडिशियल प्रोसेसेस के
2: ऐसा गालिन का इनकार कहो पीटीआई गालिन में लीडर जी आजादी चाहे थी केतरा भेरा बुधाए चुका हूं तो बानिए जी आजादी पर अदलिया सा गंढियल है। कानून वारे वफाकी वजीर आजम भरत पीटीआई के संजीदा गालिन जो मशवरो डींदे चयो आहे त गालिन के बानी जी आजादी सा मशरूत करण वारे अमल ठीक न आहे। ही चाहन था जलूसन जरिए बानी के आजाद कराइन जेको मुमकिन आहे। बानी जे चकास जो हुकुम डिनो थी वयो हुकुम ते अमल में अदालत आहे जलसन जलूसन सां कुझु थींदो।

0: थी विया। तहरीक इंसाफ जे मर्कज़ी तर्जमान यूसुफ ज़ई चयो आहे त पार्टीअ खे लांग मार्च अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करण जो मशवरो ॾिनो वियो आहे। शौकत यूसुफ ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर खे में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज खे जवाब ॼणाए पई। केपीअ में एमरजेंसी लागू करण चाहे थी, रियासत सां टकराव वधे वञे, अफ़गानिस्तान बाबति घुर्जे थो। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी खे सपोर्ट करण जो इल्ज़ाम लॻाईंदे पार्टीअ ते बि पाबंदी लॻी सघे थी। पानी पाण बि लांग मार्च मुलतवी कयो, संजीदगी सां ॾिसणो पवंदो।
1: मार्च करने की उन्होंने मुलतवी की है। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं, बड़के मारते हैं। मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की हो तो 27 को हो जाता, तो भी नहीं होगा।
2: पीटीआई में मार्च करने की हिम्मत ही ना है। 4 अक्टूबर ते भी लॉन्ग मार्च न थींदो, मार्च थियणो हुजे 27 सितंबर ते ही थी वञे। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपीके में दहशतगर्दीअ खे करण पीटीआई जे वस में न आहे, ना कुझु बि न थींदो, कम करणो पवंदो।
0: पाकिस्तान जे अमन वारी ख़्वाहिश खे कमज़ोरी न समझो वञे, अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो जवाब ॾिनो वेंदो। सुध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतातरण चयो आहे त अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दीअ वारे माइंड पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा मौजूद आहिनि। अफ़गानिस्तान मसइला अक्सरियत पसंदीअ सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुरिजे।
2: अमेरिकी सदर ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जा असासा बहाल करण लॻल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आछ नाहे कई। ख़बर कूड़ी आहे, न्यूज़ वेबसाइट खे ख़बर हटाइण घुर्जे, तमामु जल्द तेल जे अघनि में बि लात थींदी।
0: ज़रिए 7 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी जवाब जो इंतज़ारु आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राजी चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहं सालसनि सां थियल हथ में ईरानी मौक़ुफ़ अमरीका ताईं पहुचाए छॾियो आहे। व्हाइट हाउस जो जवाब अञा तहरान खे मिली वेंदो। एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह कंदड़ प्रोपेगंडा कई पई वञे। ईरान जे मौक़ुफ़ में का बि लचक न आहे। आबन ऐं अरुम्स बरक़रार आहिनि।

शो हली रहो आहे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद चयो आहे त अर्ली तरमीम को लाभ न ॾेई सघी आहे, नवनि इंतज़ामी यूनिट्स तरफ़ वञणो पवंदो। हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे।

0: पीए बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन सत दहशतगर्द मार जी वेपीए जे बाड़ावारे इलाके दौरान फितनल खारज जा पंज दहशतगर्द मार जी विया। बलोचिस्तान में चागी जे इलाके नोशका में ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मार जी विया। मार जी वाले दहशतगर्दन वट सिक्योरिटी फोर्सेस मोदी कयो
1: वेठा टन डीआर चौक का तकरीबन छह का सत मू उन टाइम तो उतरे मौजूद हुआ। मां उनके गाड़ी हिट हथियारबंद के गाड़ी हिट करने की कोशिश कई। गाड़ी मुझी हेठे सारन के फसल में लही हुई बंद थी वही बाद में करे रहे।
2: केटीएन न्यूज कानपुर मर्जीम ख्याल शिकारपुर में हथ एसएसपी शिकारपुर बाजैबी पुलिस करार नहीं छी धाड़ेल अजीम कोट शाहू थाने जे अध शेरगढ़ पिकेट वट छड़े वया। अजीम ख्याल हक सच लिखण तां भोतार अगवा करायो लगातार धाड़ेलन सां राबते में हो। वक्त अचण ते नाला जाहिर कंदस धाड़ेलन धमकियूं डिनियूं आहिनि त भोतारन ऐं संदन सहूलतकारन जा नाला खया त कुटुंब खे कतल करे छॾींदा।
0: चक वेझो गढ़ी तेगो जे कचे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन मुबैना ड्रोन हमले जो गोलो किरण सबब टे ॼणा मारिजी विया। औरतुनि ऐं ॿारनि समेत नव ॼणा ज़ख़्मी ॿ ॼणा ॻणितीअ वारी हालत में सखर

0: बजड़ा कतल इस्लाम कोट में एक जने जो लाश मिलो है। लाड़काने जी सिविल लाइन थाने जी हद में हथियारबंद जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेदी मारजी वयो। कनकोट में अणजातल हथियारबंद जी फायरिंग में मोहम्मद खान मारजी वयो। बिनी कतलन जा कायन इस्लाम कोट जे गेस्ट हाउस जी वास पीरसन जो लाश हथायो। रामिया मौजूद मलीर वासी सैद आफ्ताब आलम रात कमरो बुक करायो हो चयाई तथर को
1: थियल सोरहं ॼणनि जी टेतालीह वर्सी तक पुनल चांडियो में वरसी तक शहीदनि जे वारसनि जी मज़ारनि ते हाज़िरी। गुलाम कादर चांडी चयो त ॻोठ पुनल चांडियो जमहूरियत जे बहालीअ लाइ जान जी ॾिनी। खेन सलाम पेश कयूं था।
0: सिंध में नव महीननि दौरान रेबीज सबबि पंटीह ॼणनि जे फौत थियण जी तसदीक थी आहे। कराची जे अस्पतालनि में नव महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 45,000 खां वधीक केस रिपोर्ट कया विया आहिनि। कराची जे ॿियनि अस्पतालनि में पिण नव महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 7,000 खां वधीक केस साम्हूं आया।
1: तंगवाणीअ में शहीद थियल एसआई जे वारसनि जो माली सहायता न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ लश्कर बिजाराणी वासी सिंध सरकार तरफ़ां माली सहायता न थियणो कयो। वारसनि मूजिबि एसआई केसर बहलाणीअ खे ड्यूटीअ दौरान हिकु साल अॻु मलीर में शहीद कयो वियो। हुकूमत माली सहायता।
0: ककड़ में 20 ॾींहं अॻु क़तल थियल पोरे जाफ़र कलोईअ जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ वारसनि जो एहतजाज। कलोई वासिन औरतनि समेत प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। वारसन चयो आहे त नौजवान जाफर कलोई खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।
1: थियल ओटी टेक जवाबदारनि जी स्टाफ तरफ़ां एहतजाज। सरकारी ओपीडीज़ जो बाइकॉट करे धरणो।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर।
3: पी मटियारी की है 1.6।

पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: के होते हुए आप कहें कि जी जलसे जुलूस से एहतजाज से शहरों पर चढ़ाई करके आपने ताकत का इस्तेमाल करके वो मकसद हासिल करने जो कि नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
1: हुकूमत पीटीआई से गालियन का करें भी इनकार रहे कि पीटीआई गालियन में लीडर की आजादी चाहे थी केतरा ही फेरा बुधा चुको आई हूं त बानी जी आजादी हुकूमत सा न पर अतलिया सा गंढल है। कानून वारे फाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तरण पीटीआई के संजीदा गालियन जो मशवरो डींदे है त गालियन के बानी जी आजादी सा मशहूर करण वारो अमल ठीक न है। ये चाहन था त जलसन जुलूसन जरिए बानी के आजाद कराइन जो मुमकिन न है। सुप्रीम कोर्ट बानी जी चकास जो हुक्म दिनो हो जो थी वो हुक्म ते अमल में खोट आ त अदालत के दिसनो है जलसन जुलूसन से कुछ न थन्द। पीटीआई जी लॉन्ग मार्च खिलाफ पार्टी अंदरा आवाज उथण शुरू थी वह तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शौकत यूसुफ सही पार्टी के लॉन्ग मार्च अणजातल मुद्दे ताई मुलतवी करण जो मशवरो डेई छो। शौकत यूसुफ सही पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के लिखियल खत में चयो आए त वफाकी हुकूमत कुछ इश्यूज के जवाज बणाईंदे केपी में इमरजेंसी लागू करण चाहे थी। रियासत से टकराव बदरा गालियन लाए रस्तो हमवार कयो वने चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आए त पीटीआई जी लॉन्ग मार्च जो फैसलो बरकरार आहे केपी असेंबली के टोण जो को भी इरादो न आहे। सुहेल आफरीदी के नाहल करार नथो डिनो वने मुतबादिल ते भी मुशावरत न आहे थी।
2: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़ के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करने की हिम्मत ही ना है। 4 अक्टूबर ते भी लॉन्ग मार्च न थी मार्च थियण हो जाए तो 27 सितंबर ते ही थी वने। हा केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो है त केपी में दहशतगर्दी के कंट्रोल करण पीटीआई के वस में ना है। डायलॉग हरण से कुछ न थो कम करण पवन्द। पाकिस्तान की अमन वाली ख्वाहिश की कमजोरी न समझो वे अफगान सरजमीन तांदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब दिनो वो सुद समा वारो वजीर अताउल्ला तार है त अफगान तालिबान रिजीम के दहशतगर्दी वाले माइंड सेट में निकलो पवन्द। अफगानिस्तान में दहशतगर्दन जा थक मौजूद आन अफगानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणी सोच जो नतीजो आन अफगान अवाम के पैं मुस्तबिल बाबत फैसलो करण जो हक मिलन घुर्ज। अमरीकी सदर ईरान जा जब्त असासा बहाल करण वाली खबर रद्द कर छी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो है त ईरान जा जब्त थियल असासा बहाल करण ए ईरान ते लगल पाबंदियों हटाने बाबत ईरान के आछ नाहे कई खबर कूड़ी है। न्यूज वेबसाइट के खबर हटाने घुर्जे तमाम जल्द तेल के अगन में भी लाभ थी। कट नुकतन ते वतल मनसूबो अमरीका के मोकलो है। हाँ ईरान के अमरीकी जवाब जो इंतजार है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग्ची चयो।

GFM सखर, GFM मिरप्रखास, GFM लाड़कानू, GFM मोरो, GFM मेहरापुर, GFM मटियारी, GFM सकर। सुहणी सिंध जी सरजमीन ते शाम जे इन पहर में गोठन वाहणन वस्तियन बस्तियन आबाद शहरन में ही आवाज GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो है। अवां जी खिदमत में शो पेश कजे थो सिंधड़िए जी शाम। सिंधड़ी जी शाम में मोहब्बतन भरियो यूनिस बकारी जो सलाम। जी मौज सामाइन अवां जो वक्त किए पे गुजरे अवां बिल्कुल ठीक ठाक ऐं हशाश बशाश आयो। असां के उम्मीद है तव्हां खुशबाश हूंदव। दोस्तों जेकॾहिं तव्हां खुश आहियो त तव्हां खे सॼी दुनिया खुश लॻंदी ऐं जेकॾहिं तव्हां परेशान हूंदव त पोइ तव्हां खे पूरी दुनिया परेशान लॻंदी। सो अव्हां ते छॾियल आहे त तव्हां पंहिंजो पाण खे खुश रखी सघो था या परेशान। कॾहिं कॾहिं असीं पराई परेशानीअ में बि घणो परेशान थी वेंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं असीं पंहिंजे ख़ुशीअ में बि मापजी नाहियूं सघंदा। बहरहाल इंसान इंसान आहे, पंहिंजे हिसाब सां जीए थो, हले थो, घुमे थो, फिरे थो, जेतिरो थी सघे थो ॿियनि जे ख़ुशियुनि लाइ जीओ।

जी जनाब, तव्हां मैसेज करे सघो था। तरीक़ेकार आहे, लिखणो आहे MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 1881 88 मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। तव्हां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियो जी पेशकश यकीन आहे अव्हां जे नाम।

वेलकम बैक मजीद सामईन अमां बुधो पिया जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के अवां जे पंज शो अमां बुधो पिया सिंधड़ीए जी शाम आए आई अमां जो आरजे अवां सां मुखातिब आहे यूनिस बकारी मोहब्बतुन जी महफिल जारी हो सारी सो मौज़े समय जे अवां शामिल थियण चाहियो था तो मैसेज हाणे ई मोकिलियो लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते असांखे मैसेज ॾेई मोकिले सघो था ऐं मैसेज जीअं ई तव्हांजो पहुचंदो त ज़रूर शामिल कंदासीं ऐं हा GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ध्यान सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां ॿुधण लाइ तव्हांजूं मोहबतूं ऐं अव्हांजो थोरो थर जी वारीअ खां वॾो मैसेज पहुची चुको आहे सजण सांगीअ जी वांड खां असांखे ॿुधे थो गुलाब गुल अवां जूं तमामु घणी महिरबानी गुलाब गुल थैंक यू भलीकार चवंदासीं मोहबतूं अव्हांजूं ऐं असांखे

शहर झोल खां गोठ गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज फकीर मोहम्मद जलालाणी अवां जो तमाम घणी मोहब्बतूं भलीकार महबूब नाज जलालाणी मुख्तियार नाज जलालाणी आरज़ू असलम जलालाणी जो मैसेज पहुतो अवां लिखियो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम तमाम तमाम घणियूं महिरबानियूं ओठ मुरीद वंगरियो रोहड़ी सखर का नजीर अहमद मोहसिन अली आई मुदसर अली मंगरियो बुधन पिया अवां जो तमाम घणी मेहरबानियों ए मोहब्बतों अवां के चौंदासी भलीकार खुश हुजो तमाम घणी मेहरबानियों भलीकार ए गोठ हाजी सुल्तान लुंड का प्यार अली लुंड बुधे पियो अवां जो तमाम घणी मोहब्बतों झलूरी खां खालिक लाशारी अवां जो मैसेज पहुतो अवां जो तमाम घणी महिरबानी थैंक यू वडा वड कोठा जी गुलाम खासकेली झंडो मरी खां असांखे ज्वाइन कयो कुर्बान अली खासकेली अवां जो तमाम घणी महिरबानी कुर्बान वेलकम चवंदासीं ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क तमाम शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज कयो लिखी वठो जी जी बिल्कुल शुरू में लिखो MTI MTI लिखण खां पोइ स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो जी हा पंहिंजो नालो लिखण खां पोइ 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो

मैसेज पर तो यूनुस भाई क्या हाल है, सलाम कबूल हो। 78 मोरी खा राजा हमीर चंद मैसेज मोकलो। आई किशोर तांजो तमाम घणे मेहरबानी। हीरा लाल अवासा गद सवाई लाल बुधे पियो तमाम घणे मोहब्बतूं भलीकार साईं।

यह है GFM 88 रेडियो नेटवर्क। शो है सुधरी जी शाम अवां जे नाम इन ट्रैक के बुधंदे कमर्शियल ब्रेक दा वधनासी जेखा पो वापस अची वरी पवां जे मैसेज शामिल कंदासी। तेस ताईं जल्दी जल्दी टाइप करे वठो MTI स्पेस वही पेंजे गोठ ए शहर जो नालो लिखो पेंजे नालो लिखो 888-188-81 असांजो नंबर है उनते मैसेज डारे मोकल छ।

0: हक सच जो आवाज
1: हकी वक्त आवा बुद पिया जीएफएम मीर प्रकाश जीएफएम सखर जीएफएम लाड़कानू जीएफएम मोरो जीएफएम मेहरापुर जीएफएम सकरंड जीएफएम मटियारी आई जीएफएम मातली जो गडियल आवाज सजी सिंध में गूंजदड़ रेडियो जो आवाज जिन जो नालो आहे सिंध जो आवाज सुवारी सिंध जे मलूक मिट्टी जे मलूक माणन के सिक भर सलाम ए शाम जे इन पहर में अवां जे लाए दुआगूब आयूं ऐं जेकॾहिं अवां चाहियो था तव्हां इन शो जो हिसो बनजो त बिना देर जे एमटीआई लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो 888-881 असांजो नंबर आहे जंहिं ते मैसेज ॾियारे मोकिलजो अवां जा मैसेजिस यकीन शामिल कंदासीं जीएफएम 88 रेडियो नेटवर्क के ध्यान सा गौर सा प्यार सा।

अजायब सां ॿुधंदा आहियो असां जे लाइ इहा वॾी ॻाल्हि। लुटको मोरी खां अब्दुरहमान लगारी ॿुधे पियो। मिठा खान लगारी अवां जी तमामु घणी महिरबानी। वॾा वॾ तालिब हुसैन लगारी अवां सां गॾिजी ॿुधे पियो। किरोड़े कुर्ब तव्हां जा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। साॻी माग खां मोहम्मद साले लगारी ॿुधे पियो। लालबख्श लगारी ऐं बिलावल लगारी ऐं उसामा लगारी अव्हां जूं महिरबानी। कुंडरी खां चवन कुमार कोहली डॉक्टर अनीता चौहान संगीता पारसी मैसेज पहुतो, अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी। पाबो वेरो थरपारकर खां असांखे ॿुधनि था दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय, दानिश कुमार मेघवाड़, सूरज गुल ऐं शंकर लाल मेघवाड़, अव्हां जूं महिरबानी भलीकार। ॻोठ झपियो खां मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो ऐं रोशन अली पाढ़ो ॿुधनि था, अव्हां जूं मोहबतूं ऐं अव्हां खे चवंदासीं भलीकार।

हीउ ज़बरदस्त ट्रेक आहे, तमामु प्यारो ट्रेक आहे, अर्शद महमूद जो आवाज़ आहे। अचो त गॾिजी ॿुधूं, दर्द दिलि में यार न ठही तॾहिं त दिलि ॾुखाईंदो।

झुड़बी का वफा गुलाम रहीम बलोच बुधे थो अवां जो तमाम घणी महिरबानी ऐं बिलावल बलोच बुधे पियो भलीकार असगर ऐं नंढड़ो शहज़ाद अहमद बलोच भलीकार

डोक्यावाह जे वेझो गोठ आहे सुमरो खान लाशारी उतां खां असांखे ज्वाइन कयो आहे गुलाम हैदर लाशारी अवां जी महिरबानी गुलाम मुर्तज़ा लाशारी अवां जी महिरबानी अवां खे चवंदासीं भलीकार वेलकम चवंदासीं वॾा वॾ अवां जा ख़ुश हुजो आबाद हुजो ऐं गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी अवां जी मोहबतूं गुलाम सरवर लाशारी ऐं थैंक यू गुलाम यासीन लाशारी भलीकार।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.4।
1: दिस प्रोग्राम इज
2: एंड गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: ॿुधायो पिया त बाक़ी असां वटि बचिया आहिनि 7 मिंट मैसेज शामिल करण जा, तव्हां मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जीवन सवाइन अमालिको एमटीआई स्पेस दे पने गोठ है शहर नालो लिखो पने नालो 888-881 मैसेज मोकले छो गुलाम सर्वर असांगे बुधे पियो अंसारी शहर जो है वो अवहां लिखो पने गोठ ओके जनाब थैंक यू जी लोको शहर लिखल है ओके रोहड़ी शरीफ ए तमाम घड़ी मेहरबानी वड़ा वड़ा वहां जा साई खुश हो आबाद हो थैंक यू वेरी मच तक बुध पाया असि के वेलकम चवी भलीकार चवी हाँ मोजिज दोस्तों तमाम जैसे शामिल थे चाहो था जल्दी जल्दी से लिखो MTI स्पेस गोठ शहर जो नालो लिखी नालो लिखो 888-881 मैसेज मोकले छो ओके जनाब असम पे जिक्र किया गुलाम सरवर अंसारी साहब मैसेज पौतो पेरियो दफो पौतो है तो तहज तमाम घड़ी मेहरबानी खुशी थी तक बुध पाया थैंक यू वड़ा वड़ा वेलकम चौंदी तक जो तुम्हारे किशो जो हिस्सों बन चुका है अवजा ब मैसेज अगर अगर पौता तमाम घड़ी मोहब्बतों

तपाई मजिस दोस्तो यकिनन ब्रेक वठण लाए पाण के हलणो आहे जदे न्यूज बुधण जे लाए स्टूडियोज में उनके पहिरी तां जे लाए ट्रैक प्ले करणो आहे।

त पोइ हलूं था ज़बरदस्त ट्रैक ॿुधण। तेसि ताईं तव्हां नोट करे वठो, लिखणो आहे तव्हांखे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखणो, पंहिंजो नालो 888-188 ते मैसेज मोकिलिजो। ज़बरदस्त ट्रैक आहे, इंजॉय कजो ऐं हिन ट्रैक खे ॿुधंदे ॿुधंदे न्यूज़ ब्रेक ताईं पहुचंदासीं, जितां वापसि अची तव्हांजो कॉल्स शामिल कंदासीं।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गया हूँ
2: पाकिस्तान के लिए महफूज दारुलखिलाफा भी है वो और महफूज दारुलखिलाफा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपने माजी में देखा, वो कहते हैं ना जी कि आपका जो माजी है वो आपके किरदार की गवाही होता है। मई 2022 में क्या हुआ और नवंबर 2020 में क्या हुआ, मुज़ाकरात से कोई गुरेज़ा नहीं है। मुज़ाकरात संजीदा होने चाहिए। मुज़ाकरात की बुनियाद ये है कि उन्हें रिहाई चाहिए अपने लीडर की। हमने बारहा कहा है कि उसका फोरम अदालतें हैं, हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है। जुडिशियल प्रोसेस के होते हुए आप कहें कि जी जलसे जुलूस से, एहतजाज से, शहरों पे चढ़ाई करके आपने ताकत का इस्तेमाल करके वो मसल कर लें जो कि नहीं किया जा सकता।
1: चुकायूं तो बानी जी आजादी हक अतलिया सा गंढियल है। कानून वारे फाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तर पीटीआई के संजीदा गालियन जो मशवरो डींदे चयो है तो गालियन के बानी जी आजादी से मरण वारो अमल ठीक ना है। ये चाहन था तो जलसन जुलूसन जरिए बानी के आजाद कराए जो को मुमकिन ना है। सुप्रीम कोर्ट बानी की चकास जो हुक्म दिनो हो जो हुक्म ते अमल में खोट है तो अदालत के दिसनो है जलसन जुलूसन से कुछ न थन्दो।

0: पीटीआई जे लांग मार्च ख़िलाफ़ पार्टी अंदरां थियण शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ़ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी खे लांग मार्च अणजे ताईं मुल्तवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज खे जवाज़ बणाईंदे केपी में एमरजेंसी लागू करण चाहे थी। रियासत सां टकराव बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई जी लांग मार्च जो फ़ैसिलो बरक़रार आहे, केपी असेंबली खे टोड़ण जो को बि इरादो नाहे। सुहेल आफ़रीदी खे नाहल क़रार नथो ॾेई सघिजे, मुतबादिल ते बि मुशावरत नाहे थी।
1: देखिए, मार्च ये उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, उन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली बढ़ के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
0: पीटीआई में मार्च करण जी हिम्मत ही ना है, 4 अक्टूबर ते भी लांग मार्च न थींदो, मार्च थियणो हुजे हा त 27 सेप्टेम्बर ते ही थी वञे हा। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपी में दहशतगर्दी खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में नाहे, डायलॉग हणण सां कुझ न थींदो, कुझ कम करणो पवंदो। अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुद समाव वारो वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दीअ वारी स्टेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूद आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणी सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। कतर ज़रिए 7 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी इंतज़ार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ज़ी चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहं कतरी सालिस सां थियल मुलाक़ात में ईरानी मौक़िफ़ अमरीका ताईं पहुचाए छडि॒यो आहे। व्हाइट हाउस जो जवाब अॼु तेहरान खे मिली वेंदो। एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह प्रोपेगेंडा कई पई वञे। ईरान जे मौक़िफ़ में क़ाबिल लचक नाहे आई। आपदा हुरमुज़ बाबति शर्त बरक़रार आहिनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: पंहिंजे करे बैलेंस न मोकिलियो, मयार वरी मूंखे थारियो। इहो त सुठो कोन्हे कंहिं महिमान खे मानी खाराइजे, बोर्ड न ॾिजे ऐं पोइ चइजे तो खाई ढो कोन कयो त पोइ हुन महिमान जो कहिड़ो ॾोहो वीचारे जो। कॾहिं कॾहिं न रुखी मानी महिमान कोन खाई, तंहिंखां न सलाह कजे। सुठी ॻाल्हि आहे, मैसेज मोकिलियो अथव पर्सनल ते, पर्सनल नंबर असांजा बंदि हूंदा आहिनि ऐं हू बिल्कुलु खुलियल ई कोन हूंदा, तव्हां ट्राई कंदो त बिल्कुलु बंदि हूंदा आहिनि। इन जे करे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो हिकड़ी ॻाल्हि, तमामु पुराणा ॿुधंदड़ आहियो न, हाणे इहा ॻाल्हि असांजे ॿुधंदड़नि ताईं बि कनवे थिए पई, त जॾहिं मैसेज कयो था त 88 81 ते मोकिलियो, न शामिल थियो त असीं ॾोहो ॾंढ भरे ॾींदासीं। ठीक है, थैंक यू, लख तोरा। ओके जनाब, साज़े आवाज़ जे साथ में केरु हूंदो असां गॾु? नंबर आहे 2034-3025-786। इन नंबर ते असां गॾु ॾिसंदासीं केरु महिरबानी किथां खां ॿुधे पियो। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां? जी ज़ुल्फ़िकार चवनि साहब, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? ख़ुशि हुजो। जी जनाब, साज़े आवाज़ जे साथ में जेके महिरबानी असां सां गॾु, यकीन असीं पुरनि सां गॾु।

0: ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਕੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਥਾਂ ਖਾਂ जी रुस्तम अली पवार
1: शुक्र आलो खुश हो
0: अलहमदुल्ला दुआ है तुम कद भी केर पे बुधे
1: शाह नवाज पवार नवाज फकीर मोहम्मद जलालानी दिलीप कुमार मेघवा रामचंद मकवाना गुलाम रहीम बलोच कुर्बान अली खास केली मोहम्मद आचर खास केली जेके बि दोस्त बुधन पिया रहमत अली जखरानी सलाम
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

3525786 बड़ी 340 पंटी 25 786 ते अवां जी दी कॉल कंदा शामिल दिसदासी त असां गॾु हाणे कॉल ते केर थो शामिल थिए।

0: तपाईँ नम्बर नोट गर्यो 0334 3525 786 ॿुड़ी 324 5525
1: 786
0: कॉल अटेंड करण जी कोशिश कयूं था ॾिसूं था कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला अवां जी दुआ तव्हां केरु साहिब ऐं किथां खां लगारी साहब खुश आयो ठीक अलहमदुल्ला अवां जी दुआ लॻी पई आहे तव्हां ॿुधे
2: मुंहिंजो दोस्त
0: ॿुधे
2: जी जी अच्छा

0: हाजिर हाजिर हाजिर मेहरबानी साईं लख थोरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू खुश हो जी जनाब काल जो नंबर बुढ़ी टे सौ चौटी पंटी पंजवी सत सौ छियासी कॉल अची चुकी है दिसंदी कैंजी है कॉल हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम केर साहब किथा का
1: जेकबाबाद का शौकत अली जखाणी
0: शौकत साहब मेहरबानी वेलकम चवंदी तुम।

0: رستم پاور آئے فقیر محمد جلالانی نذیر احمد منگریو رحمت علی جکرانی
1: جی جی
0: ناز منگر خان جمالی جے کے بھی دوست سبن کے سلام پیار نی لونڈا ہے
1: مہربانی مہربانی لکھ تھور
0: مہربانی
1: थैंक यू वेरी मच थैंक यू जो अवां सके बुद नेटवर्क दिसंदासी त असा सके कॉल ते केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम आवाज अचे पियो
2: जी जी
1: केर साहब पिया गलायो
2: जी जरूर चंडियो मारा मोरी खान गोदाज लतीब
1: जी जी अवां सके बियो केर पियो बुधे
2: जी मां अगर कुछ दोस्त है ना जहीर अली चांदियो अर्जुन चांदियो
1: जी जी मेहरबानी लख थोरा थैंक यू साईं खुश हुजो आबाद हुजो साज ऐं आवाज जो साथ प्यार ऐं पंहिंजाइप जा रंग ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम भाउ कहिड़ो हाल आहे
1: जी शुक्र अलहमदुल्ला तव्हां केरु साहिब ऐं किथां खां
3: घोट बाबू वेरो थरपारकर खां ॻाल्हायां पियो दिलीप कुमार मेघवाड़
1: जी दिलीप कुमार तव्हां सां गॾु बि केरु ॿुधे पियो
3: रोस्तम अली पवार रामचंद मकानो मोहम्मद अली लगर अब्दुरहमान लगर प्यार लीलूडाई मलक मोहम्मद बलोचन मोहम्मद सदीक पारो ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे कलाम
1: वालेकुम असलाम तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं भली कार चवंदासीं तव्हांखे जी जनाब कॉल जो ओसियड़ो ऐं ओसियड़ो थी वियो आहे ख़तम हिकड़ी नई कॉल अची रही आहे ॾिसंदासीं कंहिंजी आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब ऐं किथां खां
4: गुलाब गुल मिटी थरपारकर
1: जी गुलाब गुल तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे वालेकुम असलाम कुर्ब गुलाब गुल महिरबानी लख थोरा तव्हांजा GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी पेशकश सिंधड़ीअ जी शाम ऐं यूनिस बकारीअ जा सलाम ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
1: साईं केरु साहब ऐं किथां खां
5: अदा मां मलिक मोहम्मद बलोच मिठी थरपारकर खां
1: छा हाल आहे मलिक मोहम्मद बलोच साहब
5: साईं अलाह जो शुक्र आहे मां ख़ुशि आहियां यूनस भाउ तव्हां ख़ुशि आहियो ख़ैर
1: अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे तव्हां ॿुधायो बिल्कुलु ठीकु आहे
5: अॼु ॾाढी तव्हांजी नशरियात बि बहितर थिए पई प्रोग्राम बि ॿुधूं पिया ऐं दोस्तनि जूं कालूं बि ॿुधूं पिया तमामु घणी ख़ुशी थिए पई
1: तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं तव्हांजूं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड
5: यादि कंदासीं
1: यादि देरी न करियो बिना देर जे यादि करियो
5: दिलीप कुमार रोस्तम पवर मामन सिद्दीक पारो रामचंद मकवाणो नाज नगर खान जमाली सां गॾु जेके दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे खोड़ सलाम सलाम
1: वालेकुम सलाम महिरबानी लख थोरा थैंक यू वेरी मच भली कार जी दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो मूंखे शॉर्ट ब्रेक वठणो आहे ऐं हिकिड़ो मिंट बचियो आहे बाक़ी ब्रेक में तंहिं करे बसि हिकड़ी शॉर्ट कॉल वठी वठूं हुन खां पोइ ब्रेक वठणो आहे ॾिसंदासीं त शॉर्ट कॉल में असां सां गॾु केरु हूंदो हलो अस्सलाम वालेकुम

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे,
4: माजी है वो आपके किरदार की गवाही होता है। 2022 में क्या हुआ और नवंबर 2024 में क्या हुआ। मुज़ाकरात से कोई गुरेजा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात संजीदा होने चाहिए। मुज़ाकरात की बुनियाद ये है कि उन्हें रिहाई चाहिए अपने लीडर की। हमने बारहा कहा है कि उसका फोरम अदालतें हैं, हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है। जुडिशियल

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM।

अंदरा एक आवाज उठाण शुरू थी पा तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जमान शौकत यूसुफ सही पार्टी के लॉन्ग मार्च अणजातल मुद्दे ताई मुलतवी करण जो मशवरो दई छो। शौकत यूसुफ सही पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के लिखल खत में चाहिए तो फाकी हुकूमत कुछ इश्यूज के जवाब बढ़ाई दे केपी में एमरजेंसी लागू करण चाहे थी। रियासत से टकराव बदना गाल रस्त हमवार वे चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चाहिए तो

0: पीटीआई जे लॉन्ग मार्च जो फैसलो बरकरार आहे। किरण जो को भी इरादो नाहे, सुहेल आफरीदी के नाहल करार नथो ॾेई सघजे, मुतबादिल ते भी मुशावरत नाहे थी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: थम थम थम, किताबे लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलम शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी 1.6
1: उधरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: की बनी है
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शाह,
2: उसी खित्ते की बस
1: AFM नेट
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: कल मनसूबो अमेरिका के हाँ इकतरी साल सात में ईरानी मुताई पहुंचाए छी वो कन्नड़ प्रोपेगेंडा मौके में शर्त बरकरार

0: अंदरां ई आवाज़ उथण शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ़ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी खे लॉन्ग मार्च अण ॼातल मुदे ताईं मुल्तवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज़ खे जवाज़ बणाईंदे केपी में एमरजेंसी लागू करण चाहे थी। रियासत सां टकराव बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो वञे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च जो फैसलो बरकरार आहे। केपी असेंबली खे टोड़ण जो को बि इरादो न आहे। सुहेल आफरीदी खे नाहल करार नथो ॾेई सघजे। मुतबादिन ते बि मुशावरत नाहे थी।
1: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। इन्होंने मुलतवी की है, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं भर के मारते हैं। मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
2: नेटवर्क पर मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: छा तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो
1: हक़ सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6
2: लाल शहबाज़ सिंध।

ओटी हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि. एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर. राबितो 0711-56-35-642.

0: 0310-8166-111.
1: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
2: छो भला छा छा तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
1: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भुख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वनन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
2: यार तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
1: हिक इहो की है?
2: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न दुरुस्त हुंदो, अलग हजमो थींदो, आई न ताकत।
1: मां छा के
2: इस्तेमाल मां तैयार तुझे डुबण जी मजबूत करे छींदो, बुख खुली वी, खाद हजम थी, पेट में सुस्ती खई।
1: वाह यार वाह जी आई थी, पर ही किथे मिलंदो?
2: यू मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवाखाना रूढ़ी, आई राबते के लिए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। छा अवां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
3: या पंहिंजी पुराणी गाड़ी विकिरण चाहियो था, त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
2: जिते तव्हां खे मिलनि थियूं टोयोटा, सुजुकी, होंडा,
3: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं, जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
2: तव्हां जी पसंद, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार।
3: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जे गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूदु आहे, मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील सां।
2: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
3: बालाज मोटर्स नज़्द गार्डन सिटी दादू रोड मोरो, प्रोप्राइटर अली बख्श खास केली। अॼु ई राबतो करियो 0300-296-3322। अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो, पेश आहे वाइट एज, अव्हां जी फ्रेश ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: DAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Zindagi guzario, etmaad sa Quran ke samji, budhanda raho. Dr. Farhat Hashmi jo program Taleemul Quran, rozano subhu 7:30 PM te, sirf GFM 88 network te.
4: 44 saalon jo tajurbo, hazare mareezon jo at
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधंदा रहो उधंदा रहो
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज
6: जीए एफएम नेटवर्क
7: सिंध की आवाज